ये लुबु तो न्यूस डोंट हैव टू वे मिनी टॉच मुरालो सुंगेप छिनेश कोगी तुति नेसो ngalapta chogu gi sabchi lobchong che thukyu da moralo sungjep che na sabchi